और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स। लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी, एवरी वेंसडे 7 PM ऑन फ्री FM 89.0।